जी हाँ गैरी संधु बोल के गया मौत मार दी तो बंदे ईगो मार दी इस होमे जे तुसी अपने गुस्से च बदल लवो तो शायद कित कित साड़ी दुनिया साढ़े रंग भी बदल जा इन्होंने दिनों में एक खास वर्तारा जिदा कि मेरा जी करता से थोड़े ना साझा करा वर्तारा बड़ा खुशी वाला है वर्तारा सुन के बड़ा माण भी महसूस होंगे है तो जिमें मैं पहला गल की सी कि असी अजक काकरोच पार्टी की गल कर रहे उन्होंने दिनों में एक होर चमकदा सितारा साढ़े सामने आया पर उस चमक के सितारे दो गल् बड़िया अहम ने जो सा सारे का ख्याल मंगदिया ने असी ध्यान करके उन्होंने गलों का गल जरूर करिए गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर रेस के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़े 100 मीटर रेस के भारत का नंब सब तो तेज़ दौड़ वाला अथलीट बनया वो पंजाबी मुंडा जिन्हों सुपर फ्लाइंग सिख भी कहा जान लगा इस लैवल तक अज तक कोई अथलीट नहीं पहुँचा पर जो जज्बा उन्हें दिखाया वो अशके जानू जी करता पर उस तो पहला हूँ ये भी गल कर दीए सिडनी तो गुरशेर सिंह एक गल बड़े ने सोशल मीडिया से लिखता है कि हूँ गुरिंदर वीर सारे नज़र आता है पर कि हालातों के उन्हें प्रैक्टिस की पिंडा के अपने लैवल से खेतों से कम करद दौड़ता रहा घर की खुराक सरकार की सपोर्ट नहीं सानू भी पता कि भारत में मीडिया की सपोर्ट लै दे के अजय IPL चल रहा क्रिकेट की गल हो रही है असी पंजाबी भी कबड्डी के प्लेयर के उत्ते तो असी एक एक एक एक रेड से पैसे ला दें तो वह वेखो दुनिया का सब तो तेज़ दौड़ाक बन की तांग उस्मान बोल्ट तो जस्ट एक कदम पिछे है ये एक कदम पिछे असी हाँ एक इस कदम पिछे वो तैयारी है वह सरकार है हूँ उन सारे इनाम वीडियो फोटो पा के गल करने की कोशिश करते हैं उन्हें जिस तरह जज्बा दिखाया अपने चैस नंबर के पिछे लिख के लैके आया सी मैं अजे हिम्मत नहीं हारी मैं वापस आ रहा वो रिकॉर्ड तोड़न की गल कर रहा उसने इन्नी तेज़ी के नाल दौड़िया कि उसके बूट भी गर्म हो गए उसे इन्नी तेज़ी नाल दौड़िया कि उन्होंने लगन लग पाया कि ट्रैक भी मेरे पिछे दौड़ रहे हैं दौड़न तो पहला गौरमेंट दे सरकार दे विचो कोई इस गेम दे विच आस नहीं सी करता वो कहिंदे सी 100 मीटर छड तू 400 मीटर खेड तू दूजियां खेडां कर वो जित नाल आया तो जदों जितया हुण सारे उहदे जित दा सेहरा लैणा चाहुंदे आ जी हाँ पंजाबियों के भी उन्होंने दम आ जो दुनिया के कित हो सकता इस वेले गुरिंदर वीर सिंह साडा हीरो है पर असी सिर्फ एक माँ खेड कबड्डी कह के बाकी खेडा ना रोलीए सिख खेडा होंदिया ने सवाए कबड्डी दे असी किसी खेड नूं पसंद नहीं करते माँ ना कहना चाहिए कि इस वेले मेलबर्न सिडनी के अथलैटिक खिडारी अगे आ रहे हैं जिन्हों के पट्टा के सच्ची जान है वह ट्रैक दौड़ के दस रहे हैं कि असी सुरमे है आओ इन्हों नौजवानों के हाथ फड़ीए आओ इन्हों का साथ दईए पर एक गल याद रखियो कि ये सारा काम अपने जोर से कर रहे हैं जी हाँ जोर ही करना पैदा सरकार साथ नहीं दिदिया ये गल है ता ही सूँ रिवोल्ट करने पैदा ने

जी हाँ एक गीत सी एक खास फिल्म जी हाँ गीत सी फिल्म दमादम मस्त कलंदर एक गीत फिल्म दी सारी कहानी दा मोड़ है दमादम मस्त कलंदर फिल्म दा सीधा संबंध आस्ट्रेलिया नाल है इस फिल्म दे लगभग बहुत सारी कास्ट जड़ी हीरो ते होर बहुत सारे कलाकार आस्ट्रेलिया तो सन मेलबर्न तो सैमिकल ने एक खास किरदार एक विलन का किरदार चुनवाया किंग बी चौहान सिडनी तो इस फिल्म नू लेके गए कहानी आस्ट्रेलिया दे संघर्ष भरी जिंदगी नाल जुड़ती है कहानी इथों दी संघर्ष जिंदगी विच असी पिछे कुछ गल्लां नहीं दसते साढ़े मापे महसूस करते ने साढ़े बच्चे पढ़ाई दे नाल नाल इत्थे वड्डे वड्डे अफसर बन के उत्थे निकले ने असी घर वापसी की गल करते हैं असी रिवर्स माइग्रेशन की गल करते हैं पर सानू पता है कि जो आस्ट्रेलिया रह के चला जाता है वो वापस जाना बहुत औखा पर साढ़े परदेसी दिलों की तांग है कि असी वापस जाना लोचते हैं दमादम मस्त कलंदर फिल्म दे विच फिल्म का हीरो कलंदर सिंह पंजाब सरकार की इस नीति आधारित के इतने बहरले लोग आके भी कम करे साड़िया डिग्रियां क्वालिफिकेशन उत्थे बराबर होनगियां पंजाब पुलिस विच भर्ती हुंदा है पंजाब विच जो उत्थे वापर रहा है फैक्ट्रियां दा गंदा पानी इलाकियां नू प्रदूषित कर रहा है इहो जिहियां घटनावां सच्चियां गल्लां ने लोग संघर्ष कर रहे ने सरकारां उन्हां ते ध्यान क्यों नहीं दिंदियां इस दा सीधा मसला उत्थे सामने आउंदा है नकली शराब नशे दी सप्लाई सरकार पुलिस नाल मिल के किवें करदी है इस बारे गल्लां उत्थे इस कहानी सारे आउंदियां ने शायद इहो ही गीत पंजाब से हाँ कमल गरेवाल होना दा सुनिया फिल्म सिनेमा जो समाज विच लुकिया है जदों नहीं दसेगा तो फिर सिनेमा कादा जरूरी नहीं हुंदा कि फिल्म

प्रोग्राम द तीसरा सेगमेंट दे विच असि ब्रांडेड संगीत गल करते हैं बदल रही दुनिया बदल द म्यूजिक सिद्धू मूसेवाला दा गीत भी अजोके युग विच साडे सामने चलता रहा जदों सोशल मीडिया ते विरोध भावनावां दी गल्लां हुंदियां ने ते ए गीत अक्सर ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਕਡਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਦਲਦੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਬਦਲਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਹੀਰੋ

सच बोलेगा ते मिलो 295 आखिर ये सारा कुछ उसनु क्यों करना पिया क्यों कहना पिया किस तरह गल करनी पई शायद इसकी भी गल असी अक्सर सोचते रहने हैं सिद्धू मूसेवाला पूरी दुनिया के अपनी मौत तो बाद ज़्यादा छाया लोगों की सिंपति जवाना की अज भी वो है वो आवाज़ के कलोन बन के वह सच्चिया गल् अज रूबरू हो रही हैं हर एक बोल के उत्ते ध्यान करना मंगता है सिद्धू मूसेवाले का यह विरोध यह सच बोलन का पहरा देने का हीला कि उसकी मौत का कारण बनया पर उसका विरोध और जिसनों पसंद वही गिनती दे गैर पंजाबी जबान के लोगों ने भी किया उस दिया इस सच बोलन की सिंपति सोशल मीडिया राही ही होया मेरी नज़र के जो वर्तारे सोशल मीडिया होंगे ने होंगे रहे ने वह किस तरह के किवे होंगे रहे ने इस की मिसाल देखने दे लिए सानू इन्ह सारे वर्तारियों एक सांझे नली परो के देखना चाहिए ये साढ़े तोड़े दल्ला शायद नहीं अजोकी दुनिया के उन्होंने जवानों का गल कह हक है जिथे गल मैने रख दी है व्यक्ति बंदा नहीं मैने रखता है पर इन्ना नहीं जो विचार चंगे ने गल चंकी है गल सुलझी है तो अगे निकले नहीं तो सरकार को एक दबया दबाया बनया बनाया तरीका है लोगों एक ऐसी नशिया की आदत पा दवो स्पोर्ट्स सिनेमा नाच गाना रिक्रिएशन एंटरटेनमेंट एक बहुत वही गिनती के लोगों ये पिला के आप एक नवी पीढ़ी नवे पासे लैके जा सकते हैं बदलती दुनिया का ब्लेंडड नवा गीत प्रोग्राम का आखिरी गीत होगा इस नाल ही मैं इजाजत वादा घाटा माफ़ी अगले हफ्ते फिर मिलते हैं दम मारो दम पुराना गीत ब्लेंडेड सेक्शन गला जो गल पासी पुछे विकी सकते